0: पेश करने वाला हूं। जब मैं इस शेर को पढ़ता हूं तो मुझे एक वाकया याद आता है। वो दोस्त हमारे यहां बैठे हुए हैं, आगे नहीं आ रहे, उनकी मजबूरी है। जब मैं वो शेर पढ़ूंगा तो वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मदीने में कैद हो गए थे,
1: सुभान अल्लाह।
0: तो उस वक्त मैं उन्हें शेर में, जब वो छोड़ के आए थे, तो मैंने शेर कहा था।

क्या मतलब कि जब भी हुजूर का जिक्र हो रहा हो, हुजूर की महफिल हो रही हो, तो बुत बन के नहीं बैठना, हाँ मिलके पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना। शर्म आती है तो शर्म को बालाए ताक रख दे। ये हुजूर का जिक्र है, इसमें शर्म का है। हुजूर हमारे लिए कितना, हुजूर ने रातें जागी, कयाम किया, सुबह, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बस अर्ज करने का मकसद यह है कि जब महफिल में आ जाए, हुजूर की महफिल में, तो सारी शर्म को छोड़ के आए। शर्म उसमें कीजिए जिसमें करना चाहिए। हुजूर के जिक्र में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक, ये हुजूर का हक है यहाँ पर कि हम हुजूर का जिक्र करें।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: Move for 10 आ गया है. This Girl Can का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है. बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा. मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी. अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है. सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं. जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें. मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं. आप भी ज्वाइन करें. सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ एनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइव चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा दिल की अता गहराइयों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, और आपको जुमा का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। आप खैरियत से होंगे, आप ठीक ठाक होंगे, आप खुश बाश होंगे और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह पाक का नज़ूल, आपकी अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल हमेशा आप पे अल्लाह पाक अता करता रहे। आमीन सुमा आमीन। सामीन, हमेशा दुआ रहती है कि आप और आपसे जुड़े तमाम रिश्ते, आपके अहलो अबाब, आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, आपके हमसाए, आपके दोस्त और आपके चहेते और जो भी आपके करीब हैं, उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन सब को उन तमाम नेमतों से नवाजे जिनके लिए आप सब के लिए खैर बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, राहत हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, खुशी हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन। अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर बरकत अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके रिज़्क़ को जानो माल और औलाद में बरकत अता फरमाए। खुदा ना करे अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामला और आजला अता फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए और उनको दिली ज़हनी और जिस्मानी सुकून अता फरमाए, उनको खुशियों और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे अल्लाह पाक, सुकून और अमन अता करे हम सब को। आमीन सुमा आमीन। हमारी मुलाकात का दिन है जुमे का दिन है, जी हाँ जी, जुमे के रोज़ हमारी और आपकी मुलाकात होती है 11 और 2 के दौरान। यादों का सफ़र होता है, आप हमारे हम सफ़र होते हैं, आज भी यही सफ़र होगा और आप हमारे हम सफ़र होंगे हमेशा की तरह। पहले आपको सुनवाएंगे हिट ऑफ द आवर और टाइम बताएंगे और उसके फौरन बाद यादों का सफ़र शुरू हो जाएगा। आपका साथ बहुत ज़रूरी है हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा आपकी दुआएं और आपका प्यार और आपका साथ हमें मिलता आ रहा है। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं और आपकी दुआएं ही हमें लेकर यहाँ पर आए हैं कि आपके साथ मिलजुल कर ये सफ़र तय करेंगे, इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, इस सफ़र को खूबसूरत बनाएंगे आपके खूबसूरत नामों के साथ, आपकी डेडिकेशंस के साथ और आपके पैगामात के साथ। चलते हैं, आपको सुनवाते हैं हिट ऑफ द आवर और फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ तेरी बातों में आकर। श्रिया घोषाल की बहुत ही मीठी, बहुत ही सुरीली, बहुत ही प्यारी आवाज में ये प्यारा सा हिट ऑफ द आवर आपने सुना। अब आपको टाइम बताएंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 16 मिनट्स पास 11। 16 मिनट हो चुके हैं, 11 बजकर ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

अब हाथ मेरे थकने लगे हैं, ले लो सलाम गरीबों का। जी हाँ जी, हमारा भी सलाम कबूल कीजिए और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में और कालदेल के इर्द गिर्द के इलाकों में, डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड, इकीसली, इकलीस, किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में। इसके अलावा एप्पल और गूगल स्टोर पे भी जाकर आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी आप हमें सुन सकते हैं 24 घंटे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर 2 बजे तक, पुरानी सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों को के साथ यादों को याद करने आए हैं आपके साथ, मिलजुल कर यादों को उजागर करेंगे, पुरानी बातों को उजागर करेंगे, पुराने लोगों को याद करेंगे और चैनल हमें इंजॉय करेंगे आपके साथ। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आ रहे हैं, आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत और करते हैं फिर आपसे बातें।

0: looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल

0: मोहब्बत चांद है, उसकी रोशनी हो तुम। मोहब्बत चांद है, उसकी रोशनी हो तुम। मोहब्बत दिल है, उसकी धड़कन हो तुम। मोहब्बत फूल है, उसकी खुशबू हो तुम। मोहब्बत जिंदगी है, तो वो जिंदगी हो तुम।
1: साजन
0: मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लता जी की बेहद खूबसूरत

और मीठी सी आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप तमाम सामीन के गोशे गुजार किया ऑन सनराइज रेडियो पे आप सुनते हैं हमें 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में और इसके अलावा कालदरडेल में भी आप सुन रहे हैं वेस्ट यॉर्कशायर में भी 100.6 एफएम पे डीबी के जरिए आप हमें सुनते हैं ब्रैडफोर्ड केथली इल्कली स्किप्टन लीज हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं आपके पैगाम मिले आपके मैसेजेस मिले आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का आपकी दुआओं का आपके खलूस का बातें हुई बहुत ही प्यारे से भाई नदीम मंसूर भाई हमारे छोटे भाई हैं उनसे बात हुई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं गीतों को एंजॉय कर रहे हैं आपने अपने तमाम दोस्तों को तमाम फैमिली को और जो भी इस वक्त सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को सभी को आपने दुआ सलाम भेजा है और जुमा की मुबारकबाद पेश की है और हमारी बात हुई थी हमारे मोहतरम भाई अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपसे भी बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके आपके लिए हमेशा दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आप यूं ही हम सबको अपनी दुआओं से नवाजते रहें और आपका साया हमेशा आपकी फैमिली पर कायम और दायम रहे आपने तमाम दोस्तों को तमाम फैमिली को सनराइज की तमाम टीम को ढेरों ढेरों दिली दुआएं भेजी हैं अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की मुबारकबाद पेश की है मोहम्मद बशारत भाई आपकी कॉल मिस होगी माजर चाहती हूँ अभी बहुत वक्त है दोबारा से कॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर बात करेंगे हीरा खान जी आपकी कॉल भी मिस हो गई माजरत है आपसे भी अगर आपके पास भी टाइम हुआ तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा हमेशा की तरह आपसे बात करके तो वैसे हाजिर तो हमने आपकी लगा दी है आपके नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर दी हैं आपके नाम गीत भी हम लगाएंगे और आपकी जानिब से दुआ सलाम भी आपके दोस्तों तक पहुँचा देंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सबका जो कि पैगाम जिन्होंने जिनके मैसेज भी मिले स्मीना जी आपका मैसेज मिला हिना आपका मैसेज मिला मिस्टर मिसेस हुसैन आपका मैसेज मिला बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का दुआओं का प्यारों मोहब्बत का और सभी दुआएं जो आपने सब सामीन के लिए भेजी हैं उसके लिए भी शुक्रिया और जुमा की मुबारकबाद भी सभी को आपने दी है शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका

0: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तो गाना बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ों में आपने सुना, आपको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है, आप ही के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं माजर चाहूँगी, हमारे भाई तारिक भाई ड्यूसबरी से आप कॉल कर रहे थे लेकिन आपकी कॉल मिस हो गई। अभी हमारे पास वक्त है, अगर आप बिज़ी नहीं हैं और आप के पास वक्त हुआ तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। अच्छा लगेगा हमें भी क्योंकि बहुत दिन हुए आपसे बात नहीं हुई। दुआ है कि आप खैरियत से हों और ठीक ठाक हों। बात हो रही थी हमारी, मिस्टर मिसेस हुसैन आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा और आपने कहा कि बहुत अरसा के बाद ये गीत सुनने को मिला और आप इसमें खो गई थी और बहुत सी यादें इस गीत ने आपकी ताज़ा की, जिसके लिए आपने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया आपका जो कि आप सुन रही हैं, गीतों को इंजॉय कर रही हैं और हम आपके साथ को इंजॉय कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ का और आपके प्यार का। और अब देखते हैं, जी हाँ जी, एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं आपके लिए, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। फिर तेरे शहर में,
1: फिर तेरे शहर में लुटने
0: लुटने के लिए आया हूँ।

0: फिर तेरे शहर में लुटने के लिए आया हूँ। जी हाँ जी, बहुत ही दर्द छुपा था इस गीत में, लेकिन बहुत प्यारा था और बहुत अरसा के बाद मुझे सुनने को मिला। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। और अब ऐसा है कि आपको टाइम बताना है और ब्रेक भी लेनी है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:47, 47 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर यूके में, और ब्रेक लेते हैं और आते हैं ब्रेक के बाद।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के जी। हाँ जी, मोहब्बत में कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी आवाज़, सदाबहार आवाज़, हम सब की मनपसंद आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दो बजे तक। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, जिनसे मुलाकातें हुई, जिनसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। हमारे मोहतरम भाई चौधरी फरहाद भाई पाकिस्तान में, जी हाँ जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसा के बाद आपसे बात हुई, आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामल और अजल अता फरमाए। सामीन से भी इल्तिजा है कि वो आपके लिए और वाजिद भाई के लिए दुआएं करें, और जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए दुआएं करें। जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, तबीयत नासाज है, तो उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत अता फरमाए और आपकी मुश्किलात, परेशानियां, दुख दर्द सब दूर फरमाए। हमारी दिली दुआ है आप सबके लिए। आपने चौधरी फरियाद भाई, आपने अपने तमाम दोस्तों को दुआ सलाम भेजा है, उनकी लिस्ट हम निकालेंगे अगले घंटे में और उनके लिए गीत भी लगाएंगे। आपने तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की तमाम टीम को और तमाम सामीन को ढेरों दुआएं भेजी हैं और इल्तिजा भी की है कि आपके लिए दुआ की जाए, और आपने सभी को जुमा की मुबारकबाद भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वाजिद भाई, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह बहुत ही चुलबुली सी आवाज़ में आ जाए, इवन दो आपकी तबीयत कुछ नासाज थी, आपने फिर भी अपनी बहन की बहुत तारीफ़ की, बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा भाई हमेशा हमें दिल से याद करता है और दिल से दुआएं देता है। हमारी दिल से भी आपके लिए दुआएं हैं और सामीन से भी इल्तिजा है कि वो आपके लिए दुआएं करें कि आप सबको, जी हाँ जी, जो भी इस वक्त मुश्किलात में हैं, किसी बीमारी में हैं या तबीयत नासाज है, सभी के लिए दुआ करें कि आप अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको जो है वहाँ पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके दोस्तों के नाम भी, गीत भी होगा, पैगामात भी होंगे अगले घंटे में। ये आखिरी गीत इस घंटे का है जो आपको सुनवाएंगे एक बार फिर से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और ये गीत हमें ले चलेगा 12 बजे की इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे आपके पास, बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी, गीत भी होंगे और यादें भी होंगी।

0: आया है कैसा मौसम, दिल में खुमार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। उदित नारायण की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। और इसके अलावा DAB के जरिए आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड की इसलिए स्किप्टन लीड्स हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में 100.6 FM पे आप सुनते हैं क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कालडरडेल के इर्द गिर्द के इलाकों में। मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है, जी आयन व खुश आमदीद, वेलकम, गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। टाइम बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 8:12, 8 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर। और इस घंटे में भी आपके पैगामात का सिलसिला और आपके डेडिकेशंस का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जिन्होंने खबरों के दौरान हमें कॉल की, हमारी उनसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपकी लिस्ट ढूंढते हैं और फिर प्रोग्राम का जो है वो यादों का सफ़र जारी रहेगा आपके नामों के साथ और आपके पैगामात के साथ।

माँ से चाहूंगी हमारी प्यारी सी बहन अजीत कौर जी आप कॉल कर रही थी लेकिन क्योंकि मैं दूसरी कॉल पे थी आपसे आपकी कॉल मिस होगी। माँ से चाहती हूँ अगर आप दोबारा से फोन करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके आपका हाल जानकर और आपकी खूबसूरत सी हंसी सुनकर जिसका मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, हमेशा आपका प्यार पाते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज भी आप अपना प्यार और अपनी दुआएं जरूर हमें नवाजेंगी, आपका इंतजार रहेगा। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो कि हम पेश करना चाहेंगे किसके लिए। जी हाँ जी, ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, इसे नाम करना चाहूँगी मैं अपने प्यारे से भाई, जी हाँ जी मोहम्मद बशारत भाई आपके नाम करना चाहूँगी आपकी जानिब से, आपके तमाम दोस्तों के, सनराइज़ की तमाम टीम के और तमाम सामीन के, सभी के नाम आपने दुआ सलाम भेजा है और जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी चाहूँगी जो भी इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सनराइज़ की टीम को भी आपने दुआएं भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, आना तो सजनी दिन में आना सपनों में आके सताना ना।

आना तो सजने दिन को आना सपनों में आके सताना ना। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और अब बारी है जी हाँ जी ब्रेक की।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

मुंडा मोलिया तवीता वाला ते दमड़ी दा सक मल के बहुत ही खूबसूरत गीत बहुत ही प्यारा गीत बहुत ही सोना गीत पेश कीता सी जीत कौर बैठा तुहाडे लई जी हाँ जी जरूर तुसी इंजॉय कीता होना ते तुहाडे नाल नाल जी हाँ जी मिस्टर एमसी हुसैन तुहानू भी चंगा लगा चंगी गल है थोड़े लिए सी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं गीतों को एंजॉय कर रहे हैं वाजिद भाई आपके लिए भी था ये गीत आपने सुना इसे सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं हमें पूरी दुनिया में शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर दो बजे तक

मीठा मीठा बोल के ते कुंड चुक के। बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसे आपने सुना। सनराइज रेडियो पे शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप समाज साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपका साथ, आपका प्यार और आपकी दुआएं हमने पाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ ये सफ़र तय करना बहुत अच्छा लगता है और ये सफ़र तभी हंसी होता है जब आप हमारे हम सफ़र होते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे हम सफ़र हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नदीम मंसूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में शिरकत की, जिस गीत को सुनने की आपने चाहत की थी वो गीत हमारे जो है सिस्टम में नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ, अभी भी मिल गया तो ज़रूर लगा दूँगी, लेकिन मैंने दो तीन जो लिस्ट होती हैं कंप्यूटर में उनमें चेक किया है, नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया याद आवरिका, आपकी जानिब से आपकी तमाम फैमिली को, आपके तमाम दोस्तों को, सनराइज की तमाम टीम को आपकी तरफ से ढेरों दुआएं और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये प्यारा सा गीत, ये भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, आपके नाम करना चाहूँगी। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके लिए करना चाहूँगी ये गीत। माजरत के साथ दो तीन बार आपने कॉल की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आप की जानिब से आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारक। आपके दोस्तों में शामिल हैं तारिक जुल्फी हैं, महबूब इलाही हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, चौधरी फरियाद हैं, सोफी अल्लाह भाई हैं, शकील भाई बर्लिन में हैं, नवीद राना भाई हैं, वलायत खान हैं, चौधरी फरियाद पाकिस्तान में हैं, तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज खान और आमिर शहजाद के लिए और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारक हमारे भाई हीरा खान की जानिब से।

अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ। जिंदा है कितने लोग शिकायत किए बगैर। बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल थी नूर जहाँ की आवाज़ में आपने सुनी, और आप सुन रहे थे सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, आपकी डेडिकेशंस का सिलसिला और आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। आपके लिए खूबसूरत गीत और खूबसूरत आवाज़ें हम पेश कर रहे हैं, हवा के दोष पर आपके पैगामात भी आपके दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। और जिनकी कॉल्स मिस होगी उनसे माजरत चाहती हूँ, अपने तारिक भाई से, ज्यूस बरी से आपकी कॉल मिस होगी, हीरा खान जी आपकी कॉल मिस होगी, इसके अलावा जी हाँ जी एक और कॉल भी मिस होगी जिसका नंबर 906 एंडिंग पे है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, प्रोग्राम को और गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, आपका शुक्रिया साथ निभाने का और हमारी हौसला अफजाई करने का। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, नदीम मंसूर भाई आपके नाम करना चाहेंगे, और आपकी प्यारी सी खाला जी हाँ जी हमारी बहन अदीबा जी आपके नाम करना चाहेंगे, सादिया जी के नाम करना चाहेंगे, शाजिया के नाम करना चाहेंगे, हाजरा जी के नाम करना चाहेंगे, परवीन बहना के नाम करना चाहेंगे, और हमारी जानिब से नदीम मंसूर भाई आपके लिए, हमारी तमाम सनराइज की टीम के लिए आपकी जानिब से, और यही गीत जी हाँ जी वाजिद भाई आपके लिए और आपके तमाम दोस्तों के लिए होगा, तारिक जुल्फी के लिए होगा, हीरा खान जी के लिए होगा, अयूब चौहान के लिए, जावेद मीर भाई, चौधरी आसिफ रियासत, चौधरी फरियाद, तारिक भट्ट, कियानी मुदस्सर, परवेज खान और आमिर शहजाद और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम होगा आपकी जानिब से, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सब इस गीत को इंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यही गीत मिस्टर एंड मिसेस हुसैन आपको भी अच्छा लगेगा। और हिना शौकत आपकी जानिब से इजाज़ और उस्मान के लिए भी है, पत्थर के सलम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई हमसे, अरे ये क्या समझा ये क्या जाना।

बड़ी भूल हुई हमसे, अरे हमने क्या समझा, क्या जाना। बहुत ही खूबसूरत आवाज में बेहद खूबसूरत गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया। उम्मीद और यकीन है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत से गीत की जानिब, और किशोर कुमार की आवाज़ में है ये गीत, और मैं ये नाम करना चाहूँगी अपने प्यारे से भाई, जी हाँ, अपने मोहतरम भाई चौधरी फरियाद भाई पाकिस्तान से। आपने याद किया, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरे प्यारे भाई, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, हम भी दुआ करते हैं, और अपने सामिन से भी इल्तिजा है कि वो आपके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए और अपनी रहमत और करम आप पे करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई। आपने अपने तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की टीम को और सामेन को ढेरों दुआएं भेजी हैं, और जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है। और आपने अपने तमाम दोस्तों को, जिनमें शामिल हैं तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ खान हैं, आमिर शहजाद हैं, और महबूब इलाही हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, और इसके अलावा शकील भाई बरले में हैं, नवीद राणा हैं, तारिक जुल्फी हैं, हीरा खान जी हैं, और चौधरी मुजफ्फर, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हाल में, और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं। और आपने कहा ख़ास तौर पर गजाला बाजी के लिए, अतीका बाजी के लिए, नसीम के लिए और नसरीन के लिए भी कोई अच्छा सा गीत लगा दीजिएगा, और उन सब के लिए आपने दुआएँ भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई यादावरी का और दुआओं का, और हमारी हौसला अफजाई करने का। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ थी हैं और रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम दोस्त भी, आपकी फैमिली भी जो सुन रहे हैं, आपके लिए दुआगो हैं, और हमारे सामेन भी आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं, सभी आपको याद करते हैं और सभी के दिल में रहते हैं आप। ये प्यारा सा गीत आपके लिए है।

0: वो नहीं सुनता, उसे जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे, और मैं माज़रत चाहूँगी हमारी बहना गज़ाला जबीन। बहना, आप फ़ोन कर रही थी, आपकी कॉल मिस हो गई, आपकी कॉल का मैं जवाब नहीं दे सकी, माज़रत चाहती हूँ मसरूफियत की वजह से। अगर आपके पास वक्त है तो हमारे पास अभी एक घंटा बाकी है, अगर आप दोबारा फ़ोन करेंगी तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। याद आबरी का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं, आपको टाइम बता देते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:46। जी हाँ जी, 12:46 हो चुके हैं, 12 बजकर, और लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद आपके पास।
2: 24 hours a day.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz Vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
8: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
9: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
8: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
9: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
10: Official media partner, Sunrise Radio.

दिल तड़प तड़प के कह रहा है आबिजा तुझे कसम है आबिजा। मुकेश की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आवाज में आपने ये प्यारा सा गीत सुना 103.2 FM पे और www.sunriseaju.fm पे आप हमें सुनते हैं। पूरी दुनिया में 100.6 FM पे आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में और कालडेर के इलाके में डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड कीसली इल्क्लिस किप्टन लीज हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में। शहनाज मंसूर आपके दोस्त आपके होस्ट आपके हम सफ़र यादों का सफ़र प्रोग्राम है और आप हमारे हम सफ़र हैं और आपके साथ साथ अब हम जी हाँ जी प्रोग्राम के दूसरे घंटे के अख्तिताम तक पहुँचाए हैं। बहुत शुक्रिया आपके साथ का आपके प्यार का और हमारे हम सफ़र बनने का। बहुत अच्छा लग रहा है आपका साथ भी आपका प्यार भी और आपकी दुआएँ भी हमने पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा प्यारी सी बहना गज़ाला जी आपसे बात हुई। बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी है बहुत मीठी मिठास है आपकी बातों में। अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपने जो हमारी हौसला अफजाई की वो भी अच्छा लगा। आपने तमाम सामेन को सनराइज की टीम को और जो भी आपके जानने वाले हैं उन सब को फरियाद भाई को चौधरी रुखसार भाई को आमिर शहजाद को और परवेज खान को और जितने भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को तमाम को आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है जुमा की मुबारकबाद पेश की है और ढेरों दुआएं भेजी हैं। आपके लिए भी दुआएं हैं। आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें और हम सबको अपनी दुआओं से और प्यार से नवाजती रहें। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। ये भी मुकेश की आवाज़ में है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे न माने। ये गीत नाम करना चाहूंगी नसरीन जी आपके फरजाना जी आपके शकीला आबी जुबेना नोरिन नाइला आशी और शीला आपके नाम।

आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। महेंद्र कपूर की बेहद खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ दोपहर दो बजे तक प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में। जी हाँ जी आन पहुँचे हैं आप सभी का खैर मकदम। जी आयन खुश आमदीद और गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो जिन्होंने पिछले दो घंटे हमारा साथ निभाया और बहुत खूबसूरती के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ हमें यहाँ तक ले आए, सफ़र का तीसरे हिस्से में हमें ले आए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का और हमारे हम सफ़र बने रहे और हमारी हौसला अफजाई करते रहे और हमें दुआओं से नवाजते रहे। आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपके चंद लम्हे जो आपने हमें दिए उनके लिए मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि टाइम आजकल बहुत कीमती है, किसी के पास टाइम ही नहीं। कहते हैं कि बस बिजी बिजी, हमारे पास टाइम नहीं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप सभी ने अपना टाइम निकाला, हमें मैसेजेस किए, हमें जो है वो फ़ोन किया, हमसे बातें की, आपसे मुलाकातें हुई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हे अपने वक्त के जो हैं वो हमें नवाजे, उसके लिए मशकूर और ममनून हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी डेडिकेशंस का और आपके पैगाम का सिलसिला इस घंटे में भी हम जारी रखेंगे 01274306666 पे। अगर आप आना चाहें और कोई पैगाम देना चाहें, किसी को बर्थडे की मुबारकबाद या वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद देना चाहें और या किसी के नाम गीत करना चाहें, हमारे गीतों को अपने नाम के साथ जोड़ना चाहें, अपनी यादों को ताज़ा करना चाहें, तो आप आ सकते हैं। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ रहेगी दो बजे तक, आपकी यादों को याद करने आए हैं, अपनी यादों को याद करने आए हैं, मिलजुल कर यादों को ताज़ा करने आए हैं आपके संग संग। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जो कि साथ निभा रहे हैं। माज़रत चाहूँगी जिनकी कॉल्स मिस हो गई,

0: मेरे दिल में दर्द लबों पे हंसी है, मेरे दिल में दर्द लबों पे हंसी है, तेरी बेवफाई दिल ही नहीं रूह में बसी है। मोहब्बत से नफरत है, तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत से नफरत है, तुमसे मोहब्बत है, खुदा जाने जिंदगी में ये कैसी बेबसी है। चले गए जाने वाले, चले गए जाने वाले छोड़ कर रोहित, चले गए जाने वाले छोड़ कर रोहित, अब फक्त मैं हूँ और मेरी बेकसी है।
1: अरे तुझको मेरा प्यार पुकारे,
0: आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसके साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब ऐसा है कि हिट ऑफ द आवर आपको सुनवाना है, तो नहीं, हिट ऑफ द आवर तो आप सुन चुके हैं, आपको टाइम बताना है और फिर ब्रेक भी शायद आ जाए।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11 minutes past 1, 11 मिनट हो चुके हैं 1:00। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। ये गीत अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल में आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी तमाम टीम के नाम, आपके तमाम दोस्तों के नाम, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी वाजिद भाई और रसवील में आपके नाम, और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हीरा खान जी आपके नाम और आपकी तमाम टीम के नाम, और बिशारत भाई आपके नाम, और मुझे उम्मीद और यकीन है कि गजाला जबीन बहना आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी।

0: ये आरज़ू ने सजदे और दिल ने नज़र उतारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। जी हाँ जी, हमारे भाई रुखसार भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए गीत भी आएगा और आपके दोस्तों के लिए जो पैगाम आपने दिया है मोहब्बत भरा, वो ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल तो हम लेंगे ब्रेक।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। गीता दत्त की बहुत ही प्यारी, सुरीली, खूबसूरत और मीठी आवाज़ में ये मीठा सा गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ और यादों का सफ़र। और यादों के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लगता है आपकी यादों को उजागर करना, आपकी यादों को ताज़ा करना। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप जितने भी गीत हमने लगाए हैं आपने एंजॉय किए होंगे। और आने वाला गीत जो है उसे मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी, मिसिस कौर आपके नाम करना चाहूँगी। पंजाबी का गीत है शमशाद बेगम की आवाज़ में है। मुझे अच्छा लगता है ये गीत, बहुत अरसा हुआ नहीं सुना, तो आपके नाम करती हूँ। और यही गीत वाजिद भाई आपके नाम करूँगी और आपकी जानिब से आपकी तमाम दोस्तों के नाम करूँगी जो भी इस वक्त सनराइज की नशियात को सुन रहे हैं। माज़िद चाहूँगी, आपने दोबारा फ़ोन किया था लेकिन आपकी कॉल मैं नहीं उठा पाई, दूसरी कॉल पर बिजी थी, तो माज़िद चाहूँगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमेशा दोस्तों को सलाम दुआ भेजते हैं और उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो आपकी तमाम दोस्तों के लिए जिनमें महबूब भाई हैं, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, शकील भाई हैं, नवीद राना हैं, चौधरी फरियाद हैं, तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज खान हैं, आमिर शहजाद हैं और जितने भी दोस्त आपके सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये गीत करना चाहूँगी। और मिसिस कौर आपके नाम करना चाहूँगी और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी। हिना शौकत आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से एजाज़ के नाम और उस्मान के नाम करना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि हमारी प्यारी सी बहन गज़ाला जबीन आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। ओवेला याद कर, चलिए ओवेला याद कर लें मिलजुल के।

0: वेला याद कर, चलो किनू किनू अपने वेले याद आ गए। बहुत ही प्यारा गीत था, शमशाद बेगम की प्यारी चुलबुली सी आवाज में ये चुलबुला सा गीत था जिसे आपने सुना और आपको हंसी भी आई, मैं जानती हूँ आपने बताया मुझे। बहुत अच्छा लगा आपको भी ये गीत और आपने कहा कि कभी कभी ऐसी भी यादें ताज़ा करनी चाहिए। चलिए मैं आपका नाम नहीं लूँगी, तो आपने कहा कि वाकई ओवेले लंघ गए ने हूँ ओवेले नहीं आंदे। चलो फिर भी यादें तो रह जाती है ना, जो वेले गुजर गए वो गुजर गए, लेकिन यादें हमेशा दिलों में रहती हैं। तो चलिए अल्लाह करे ओवेले फिर मुड़ान, कोई गल नहीं, वेला अपना ही है जिंदगी में अगर वो कहते हैं ना कि दिल जवान हो और दिल में प्यार मोहब्बत हो तो वेले अपने ही होते हैं, वेला वक्त जो है उसे हम अपना बना ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि आप गीतों को एंजॉय वाकई एंजॉय कर रहे हैं और बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है कि जब कि आप इतने ध्यान से हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और गीतों को भी इंजॉय करते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा करते हैं कि ब्रेक टाइम आन पहुंचा है, सिर्फ एक मिनट बाकी है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद दो गीत हैं, मुझे डिसाइड करना है कि पंजाबी का लगाऊं या सलीम रजा की आवाज़ में गीत लगाऊं। चलिए देखते हैं, अभी वक्त है, दोनों गीत सुन लेते हैं, पहले बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब।
1: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit

जहांगीर भाई हैं, राना नवीद हैं, दीपा बाजी हैं, नदीम मंसूर हैं और जितने भी आपके दोस्त और सनराइज़ की तमाम टीम, सभी को आपकी जानिब से ढेरों दुआएं और बहुत बहुत सलाम दुआ। ऐ दिल, किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।

तरह की कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जी हाँ जी, वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हो यकीन हो खुदा पे और दिल से दुआ की जाए तो कहते हैं कि खुदा भी मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत कम सुनी जाने वाली आवाज़ और मेरा मनपसंद गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया। आपको अच्छा लगा आप बहुत अच्छी बात है, आप ही के लिए था। आने वाले जो चंद गीत हैं बाकी के वो भी आप ही के लिए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को इंजॉय कर रहे हैं। जीत कर बहना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी सभी को दुआएं भेजी हैं और आपने सभी के लिए गीत सुनना चाहा है। तो ये प्यारा सा गीत लता जी की आवाज़ में आपके नाम होगा, हमारी जानिब से तमाम सामेन के नाम होगा और यही गीत समीना जी आपके लिए और आपकी तमाम टीम के लिए होगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मिसेस कौर आपको भी अच्छा लगेगा और रुखसाना आपको भी, कौसर आपको भी, नसरीन, नौरीन, सबिया, नायला और शीला आप तमाम को ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। गैरों करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर।

0: तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:45। जी हाँ जी, 1:45 ब्रेक टाइम।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजय रोटी और आपकी साख होती है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैंस का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Event Bright or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात। आधी रात तो नहीं हुई, वैसे दिन ढल गया है। सुबह को आए थे, आफ्टरनून हो गई, अब हमारे 3 घंटे मुकम्मल हो गए। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, जो हमारे हम सफ़र रहे पूरे 3 घंटे, हमारी हौसला अफजाई की और हमें गाय बगाए बताते भी रहे गीतों के बारे में। आपने इंजॉय किया और ये भी कि आप प्रोग्राम को भी इंजॉय करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके साथ को इंजॉय किया, आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन रहा। आपका साथ बहुत प्यारा था और आपकी दुआएं पाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआएं लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और अगले हफ्ते अगर आपकी दुआओं ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अब शहनाज मंसूर आपसे इजाज़त चाहेगी ढेरों दुआओं के साथ जो आपने हमें दी, वो अपने साथ लिए जा रहे हैं और अपनी दुआएं आपको देते जाएंगे कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, यूं अपनों के साथ साथ रहें, खैर बांटते रहें और खैर समेटते रहें, यही हमारी दुआ है। तो वो कहते हैं कि रिश्ते सलामत रहें और यादें, हम सब की यादें जो है वो बाकी रहें, तो मुलाकातें तो होती ही रहेंगी सनराइज रेडियो पर। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे 11 और 2 के दौरान, पुरानी सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ, और फिर से आपसे मुलाकातें भी होंगी और बातें भी होंगी इंशाल्लाह। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बाद, बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़, गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 FM ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, ये दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है, यह हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे, नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा। और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

ओके ओके, सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा खबरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent? Whether you

कि जब बड़ा मायूस समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां पे जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard

राइट जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से या फिर उनको हम मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गुआस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत आपसे माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, ये आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रब्ता हमसे रब्ता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर call करें।
3: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: बोलवी
1: जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो।
0: हुन भी नहीं समझे।
1: समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो।
0: समझ गए हैं जी।

जहां से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज पे बिलीव करता हूं कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनसे मजीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है। तो मैं आपसे माजरा चाहता हूं, अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मजीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से जिंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसका एक

तरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां इक सीगियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
7: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

अच्छा जी, कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हो। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें, या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं, वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

तो लीजिए हम आपको दिए देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदड़ी तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव, लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: This is a message from Mercedes-Benz Vans in association with Sunrise Radio. Here's a number that should make you sit up. Vehicle downtime costs UK businesses an average of £1,172 per van per day. That's why Mercedes-Benz Vans created the Uptime Promise. From roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more, they have a range of advantages designed to keep your business moving. Mercedes-Benz Vans has got your back. Search Mercedes-Benz Vans today and discover their Uptime Promise. Source Stay on the Road Report. Attribution required. Based on research among 500 senior decision makers in UK businesses where vans are business critical. Learn more at mbvans.co.uk/uptimepromise.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्हें स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नी कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935
3: The classic hit, Flashback. Flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एख्तिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रफका और अपने अजीजो अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाए गए। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है। रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?
5: Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money?

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।